0: तो मैं चाहती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनको सभी को मिले, तो प्लीज बहुत अच्छे से तैयारी करके आइए और आना है जरूर, ठीक है? थैंक यू।
1: थैंक यू सुशीला जी। तो आपने कहा मिसिज, तो सिर्फ मिसिज ही रहेगा या
2: मिस्टर
1: मिसिज?
2: मिस्टर हरियाली तीज भी होगा एंड मिसिज हरियाली तीज भी होगा। जैसे मैंने बोला है कि ये प्रोग्राम फैमिली प्रोग्राम है, तो इसमें खाली लेडीज का कुछ नहीं होगा, जो भी होगा दोनों का होगा। अगर बेस्ट ड्रेस का लेडीज को मिलेगा तो बेस्ट ड्रेस का मिस्टर को भी मिलेगा एंड बेस्ट ड्रेस किड्स को भी मिलेगा। बच्चे कहाँ जाएंगे ना, पति पत्नी आएंगे तो इसीलिए सभी को मिलेगा। तो सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आइए, हो सके तो हमारी थीम में आइए, अगर नहीं भी हो सका कोई कंपलसरी नहीं है, तो गिफ्ट वहां सभी के लिए होंगे। थैंक यू।
1: ठीक है, और नेक्स्ट किसके पास लिस्ट है? भावना जी,
3: भावना जी आप बताइए।
4: तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हर इवेंट जब होता है तो उसमें डेकोरेशन भी होती है, तो इस इवेंट में जो डेकोरेशन कर रहे हैं हमारे फैनफेयर जी हैं जो कि सिल्की हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डेकोरेशंस वगैरह के लिए। हमारे यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि किसी भी आप इवेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कुछ खाने को तो मिल जाए, क्योंकि जब सब इवेंट में आ रहे हैं तो कोई नेचुरली घर जाके तो वापस नहीं खाना खाएगा, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कहते हैं डी सॉल्ट का फूड है, जिसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दे आर गिविंग लाइक अ ट्रेडिशनल फूड लाइक स्ट्रीट चाट और समथिंग भी उनके पास रहेंगे, तो आप लोग वो भी एंजॉय वहाँ पे काफ़ी कर सकते हैं। और अगर किसी को अगर जैसे इवेंट के लिए तैयार होना है कुछ है, तो हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर है हमारे क्या कहते हैं चॉइस हेयर एंड ब्यूटी, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका वहाँ पे भी रहेगा स्टॉल और आप रेडी तो हो ही जाएंगे अच्छे से। बाकी एज सच जैसे आप जानती हैं कि ये फैमिली इवेंट है, तो प्लीज कोशिश करिए कि बच्चों को हस्बैंड के पास ना छोड़ के आए, सबको लेकर आए, तो जब सब मिलकर आएंगे तो ये फैमिली इवेंट हमारा तभी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम लोग सारी फैमिली चाहते हैं कि यहाँ पर आए एंजॉय करें अच्छे से। थैंक यू
1: जी। और भावना जी, क्या आप कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हो?
2: टीम इज नॉट,
4: नहीं यहाँ पे टीम अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ देना अलाउड है, लेना अलाउड नहीं है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हम लोग मिसिस रियलिटी देते, हम भी तैयार हो के आते हैं, कभी हम भी स्टेज पे चढ़ गए ओह हमें मिला, बट हमें नहीं मिलेगा, हम बैक ऑफ द स्टेज, हमें बहुत अच्छी शाबाशी मिलती है, हम लोग उससे बहुत खुश है, तो हम लोगों को उससे बहुत अच्छा लगता है, हमें नहीं लगता कि उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए सबके सामने।
1: चलो
5: टू बी ऑनेस्ट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि शालिनी दीदी ये इवेंट कराते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत बहुत टेस्टी खाना खाने को मिलता है। शी डज अमेजिंग पार्टी लाइक आफ्टर पार्टी इवेंट के बाद, तो उस चीज के लिए हम हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हैं कि लेकिन वी विल थैंक आर डीजे बोटानिक्स, क्योंकि पार्टी है तो डीजे तो होना बनता है, और थैंक यू सो मच फॉर दैट, और मेंजीज एज वेल, और थैंक यू सो मच टू आवर मीडिया पार्टनर्स जलसा रेडियो, साडे वाला रेडियो एंड आरजे केजे लोकल्स, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू अमित जी।
6: Yeah, so firstly, festival partners, it's a festival, it's a celebration. So obviously we have Yogi Photography, that they will be our official photographer for the event. So that's really great. One thing I'm also in charge of, Shalini has made me in charge of, is obviously a raffle draw. So there'll be obviously lots of lovely prizes to be won there. So I request everyone to bring gold coins and buy lots of raffle tickets. I still remember how happy and pleased people were to get those beautiful prizes for like a very small ticket value of $2, I think. Yeah.
2: Three prizes on that.
6: Yeah, so lots of prizes there. So yeah, please come and participate in the raffle draw.
1: जी हाँ, और अगर आप बाहर से कहीं सुन रहे हो तो जो हम गोल्ड कॉइन जब बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है
2: सोने का सिक्का।
5: 24 कैरेट।
1: हम फिजी में संगा मोली बोलते हैं ना, जो डॉलर कॉइन होता है। जी हाँ, तो नो इट्स गुड, इट्स अमेजिंग, और आई थिंक रेफरल का एक खास बात ये भी होता है दैट द होल काइंड ऑफ जो लोग होते हैं एवरीबॉडी गेट्स इन्वॉल्व, तो रेफरल डज डू दैट एंड पीपल गेट एक्साइटेड, और जब ड्रॉ होता है तो फिर बस चेहरे देखना पड़ता है, जिसको मिल गया है वो हंसता है और जिसको नहीं मिलता तो वो भी मुस्कुराता है, क्लिप करता है, लेकिन पता चल जाता ना कि उन्हें भी चाहिए। जी हाँ, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, ट्राई योर लक इन डू कम। और एक चीज और है, व्हेन पीपल कम डू दे हैव टू ब्रिंग कैश या वहाँ एफ पोस्ट चलेगा?
6: ब्रिंग कैश और एफ पोस्ट
2: नहीं है, ब्रिंग

0: कैश, और नहीं फूड के लिए फोर्स होगा वहाँ, रुक्मणी सिल्क के पास भी होगा, अगर किसी के पास नहीं होगा तो ऑन अकाउंट यू कैन डू. सो और दूसरा ये है कि बहुत सारे हैम्पर होंगे, एक नॉर्थ फूड सबवे की तरफ से हमें हैम्पर मिल रहे हैं, तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर किसी भी गेम में या कोई भी कॉम्पिटिशन आप जीतते हैं तो हो सकता है कि आपको नॉर्थ फूड सबवे का वाउचर मिले. और दूसरा एक इशप्रीत फाइनेंस की तरफ से भी एक हैम्पर आने वाला है, हरियाली तीज का एक हैम्पर होगा, और सो मैनी गिफ्ट्स किड्स के लिए फेस पेंटिंग आने वाली है, और हमारी एक स्पॉन्सर्स उसकी बेटी अभी रोने लगी थी वो बाहर है, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि वो किसी भी लेडी को पोस्ट डिलीवरी या जिस टाइम उसके डिलीवरी से पहले या वैसे ही आपको अगर कोई भी मसाज की जरूरत है तो हर ब्यूटी, प्लीज हर ब्यूटी को कॉन्टेक्ट कीजिए, शी इज रियली रियली गुड फॉर मसाज एंड वेरी रिजनेबल प्राइजेस. सो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सो उनका नंबर मेंशन, अगर किसी को भी जरूरत है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी. और बच्चों के लिए फेस पेंटिंग आ रही है, सो मेरा कहने का मतलब है कि हरियाली तीज में आपको बच्चे से लेकर बड़े तक, बच्चों के पापा, बच्चों के मम्मी और जो ग्रैंड पेरेंट्स है सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा. बहुत एक्साइटेड गेम्स आएंगे, कपल्स गेम आएंगे, सो मिलते हैं जल्दी ही क्राइस्टचर्च में, हरियाली तीज, टेम्पलटन हॉल,
1: 22nd फिर वेदा भी बच्चा नहीं. सुशीला जी आपने कुछ मेंशन किया था साड़ी के विषय में, तो ऑब्वियसली रुक्मणी सिल्क तो रहेगी, इज शी हैविंग अ स्टॉल?
2: वो स्टॉल लगा रही है रुक्मणी सिल्क, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू लेटेस्ट सिल्क साड़ी. और सिर्फ वो साड़ी सेल नहीं कर रही है, उन्होंने कुछ कंपटीशन भी लाइक प्रमोशन रखा है, स्पेशल डिस्काउंट रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जो लेडीज साड़ी पसंद करती है लेना उनके लिए काफी रिजनेबल प्राइस में वहाँ पे साड़ी मिल सकती है. तो जैसे कि शालिनी ने कहा कि वहाँ पे एफपॉस की सुविधा होगी, बट अगर कैश भी रखते हैं तो इट्स इजी. एक तो गोल्ड कॉइन तो रखना ही है रेफरल टिकट के लिए, ताकि जो रेफरल टिकट सेल कर रहे हैं उनको इजी होए और आपको भी इजी होगा. और वहाँ पे सिर्फ स्टॉल तो है, फूड भी है, बिलीव मी वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है. और आप देखोगे कि इतने नए चेहरे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो कभी स्टेज पे उन्होंने डांस नहीं किया, बट हरियाली तीज ने उनको मौका दिया, और बहुत वो लेडीज भी बहुत एक्साइटेड हैं, और आप देखें कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जाएगी. और उसके बाद जो है, जब सारी परफॉर्मेंस हो जाएगी, गेम हो जाएगी, ओपन डांस फॉर एवरीबडी. सो डीजे डांस में बिलीव मी मैंने सबको वहाँ पे थिरकते देखा है. जरूरी नहीं कि आप अच्छा डांस कर तो नहीं, बट एंजॉय इज अ मेन. और ऐसे प्रोग्राम में बस एंजॉय के लिए हम जाते हैं, तो आप लोग जरूर आइए और बिलीव मी एवरीबॉडी विल एंजॉय.
1: जी हाँ, और भावना जी मॉडलिंग का क्या चल रहा है अभी? फैशन शो.
0: यस,
3: वो तो मतलब जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे हरियाली तीज पे रहता ही है, और सबसे बड़ी चीज है हमारे हरियाली तीज पे आपको हर साल की तरह इस साल भी झूला मिलेगा, जिसमें कि आप अपनी वाइफ्स को झूला सकते हैं. ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है हस्बैंड्स के लिए कि एक बार उनको जरा झूला झुला दे दोबारा से आउट ऑफ द कंट्री आके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा. बट दिस इज अ सच अ फ्री इवेंट और द फैमिली इवेंट, डोंट फॉरगेट दिस थिंग. आपको इसमें आने के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, बस अब आपको आने के लिए रेडी होना है और कुछ नहीं. वेदर देख के मत थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि ये इनसाइड है, हॉल के अंदर है, तो हर तरह से सेफ है. तो आई जस्ट कि मतलब आप सब आइए और एंजॉय करिए उस दिन हम लोगों के साथ में.
1: जी हाँ, जैसे आपने सुना कि फैशन शो भी होने वाला है, तो डोंट मिस, डू कम और देखिए, और परफॉर्मेंसेस वगैरह तो रहेंगे. इज देयर गोइंग टू बी जो फोक सॉन्ग्स आप लोग गाते हो? आई थिंक शालिनी ने आप
0: हमारे इवेंट में एक ग्रुप डांस होता है एवरी ईयर, उसमें कुछ कुछ लेडीज चेंज होती हैं, कुछ कुछ वही हैं डे वन से. आपको मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है उस टाइम, डजंट मैटर वो डांस कैसा कर रही हैं, डजंट मैटर वो स्टेज पर आ रही हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. 60 प्लस

0: 70 प्लस लेडी एज में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि नए लड़की को, नए यंग गर्ल्स को, यंग बॉयज को सब चांस देते हैं, जो 50 प्लस हो जाती है उनको कोई चांस नहीं देता अपनी स्टेज पे।
1: आप लोगों को पता चल जाता ना 50 प्लस है
0: कोई चांस नहीं देता,
2: आपके सामने ही बैठे
0: तो इसलिए मैंने सोचा आप देखना कितना अच्छा डांस कर रही है सब, उनको मतलब उनको मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो डांस करते हैं। तो आप आइए, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। दूसरा, हमारे सारे जितने भी स्टॉल वाले हैं कोई ना कोई गिफ्ट पब्लिक के लिए रख रहे हैं, हर कोई चाहे तो वो कोई ड्रॉ निकालेंगे अपनी स्टॉल पे, या कोई परसेंटेज आपको ऑफ देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, पर कोई हर बंदा आपको कुछ ना कुछ देगा। तो इसका ये मतलब है कि हमारे इवेंट में जो भी आएगा कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएगा। तो आइए और हाथ भर के जाइए। तो
2: और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप स्टेज पे देखोगे कि वहाँ पर सास भी डांस कर रही है और बहू भी डांस
0: कर रही है साथ में,
2: और भगवान ने चाह तो कुछ सालों में पोती भी डांस कर रही
1: है। उधर देख के डांस
3: ड्रेसिंग के लिए और नाचने के लिए भी, यू नो, गुड द डीजे एंड एवरीथिंग है और स्टॉल्स भी है। अगर आपके पास पैसे आप सोच रहे होंगे कि कैसे खर्च करना है, देन सी यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो जरूर आइए। एंड सीमा जी, वैसे तो आप काफी सिंगिंग करते हो, डांस भी करते हो, बट डू यू सिंग लाइक ये हरियाली जो फोक जो गाना होता है वो सब गाती भी?
4: नॉट रियली फोक, पर हाँ बॉलीवुड।
3: बॉलीवुड तो आप गाते हो तो पता है जी। हाँ, सो विच इज गुड।
0: सावन
5: का महीना पावन करे शोर,
2: शोर नहीं बाबा, शोर।

0: Very nice, very nice.
1: Yeah, very nice. Yeah, it just takes us back. Kontas me, was it Nutan?
0: Nutan
1: and Sunil Dutt, na?
0: Yes, yeah.
1: I just remember the movies, Thora Mora Yade, both Sal Pele Dekhe Thay. So, so no, those days, those stories, splendid. Or here we are. So, chalo, humara samay kaafi ho chuka hai. Aur aaj to aise bhi Tuesday and tari sardi hai bahar. But definitely, Saturday ko nahi rega because you have sorted out the weather, na?
2: Yes.
1: तो चलो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ईच टीम मेंबर फिर हम यही खत्म करेंगे लेकिन डोंट फॉरगेट याद रहे डेट आपको आपकी जो सरडे 22 अगस्त और पहुंचना है टेम्पल्टन हॉल सभी को मालूम है कहाँ पे 64 केक रोड कान बी मिस तो चलो शालिनी जी शुरू हो जाए
0: थैंक Sorry. Thank you so much, Jalsa Fizzy Radio, Rajneeta and Vinish Bhaiya. Thank you so much again. See you there and see you all there, Crashers ki public. Sabko, aap sab aaiye aur bas wahan milte hain sabko. Okay, bye.
1: Sushila ji.
3: Haan ji. ओके मैं एक बार फिर से आप सभी से विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स को भी लाइए और बिलीव मी जैसे मैंने कहा कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा एवरीबडी विल एंजॉय देयर सी यू देयर बाय थैंक यू
1: सीमा जी
4: लास्टली अगेन आई विल इनवाइट यू ऑल फॉर हरियाली तीज 22nd of August, venue Templeton Hall, or start ho raha 5:30 onwards. Sundar sundar ban ke aao, achche se tayar ho ke aao, aur hum aap sabko wahan milte hain.
1: Ji aur

0: वीडियो आप हितेश को दिखाइए, बिकॉज हम उन्हें भी वहाँ देखना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: जी हाँ भावना जी,
2: मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगी। प्लीज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू ऑन सैटरडे एंड वी आर ईगरली वेटिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज कम ऑन सैटरडे 22nd अगस्त शार्प एट 5:30। थैंक यू।
0: थैंक यू। एंड जाते जाते यानी अमित जी।
3: थैंक यू विनेश जी, थैंक यू जलसा फीजी रेडियो फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट आवर इवेंट। वेरी वेरी कोऑपरेटिव। अगेन एज एवरी द टीम मेंबर सेड, आई वेलकम द एंटायर क्राइस्टचर्च like, you know, people to come and enjoy our event. Thank you.
0: Thank you, Amit. And I would like to thank Nico for helping me with the video today. Thank you, Nico. Though he's still learning to understand what we are saying, but I'm sure he gets the gist of what we are up to. It's a festival, and obviously,
3: yes,
0: it should show when we start talking about it. Our saath mein message from Rajnita, all the best to the team and have fun. To chalo ab jaise poster dekh rahe ho to wahi pe aapko aana hai Templeton Hall. This is Haryaldi Teach 2026. Jaise aap dekh rahe ho, Shalini and her team is fully prepared. Aapko aana hai and just have good fun. Aur jaise Shalini mein mention kiya ki iske jo Haryaldi Teach ke piche jo kuch aur bhi bahut kahaniyan hoti hai, and I think shayad aap log इंडिया में 3 days ऐसे कुछ बनाते होंगे ना, अलग अलग जो नाम होता है, तो कभी और मौका लगा तो जरूर हम उस टॉपिक भी छेड़ेंगे, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन आज जी आज तो काफी रात हो चुकी है और ऑब्वियसली आपको घर पे जाकर खाना वगैरह भी बनाना है, तो विल लेट यू नो, सॉरी लेट यू गो। सभी को खाना बनाना पड़ता है ना, तो सभी को डिस्कॉर्ड चले जाते हैं। इस स्पॉन्सर को बतला दो हमारे। Now, it's always good fun. जब भी हमारा अपना प्रोग्राम होता है क्राइस्टचर्च में, then it is fun to be part of it. और हम तो हमेशा जाते हैं हरियाली टीच, एंड डेफिनेटली विल बी गोइंग देयर एंड एंजॉयिंग, जो लुफ्त हम उठाएंगे। आप भी भूलिए नहीं, आप आ जाइए 22nd अगस्त को 5:30। तो चलो हम एक गीत आपके लिए छोड़ जाते हैं, उसके बाद में मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन। और जो लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी में साथ दे रहे हैं, तो आप गीत जो सुनते रहिए, शायद हमारे पास एक या दो गीत रहेगा, उसके बाद में आज समाप्त करेंगे। बट एवरी सैटरडे की तरह हम जुड़ जाएंगे 5:30 PM आपके साथ में, और वीडियोस तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जैसे हमें मौका मिले, या कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन हो या समथिंग जिससे हमें पता चले आपका लाभ हो, वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट टू यू।

जी हाँ, आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर अविनेश, और ये जो सुंदर सी गीत हम आपको सुना रहे थे हरियाली तीज की, और इससे पहले जो टीम थी उससे आपने सुना जो प्रोग्राम के विषय में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको सुनाते हैं नवरात्रि वाला सॉन्ग, क्योंकि मैं बस सोच ही रहा था कि अब तो जो टाइम चेंज हो रहा है, अब धीरे धीरे हम नवरात्रि की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सॉन्ग आपसे शेयर करते हैं, और सॉन्ग के बाद में हमारे पास देखते हैं कितना समय हम बात करेंगे, और हो सकेगा तो एक सॉन्ग और भी हम जाते जाते आपको सुनाने की कोशिश करेंगे।

जी हाँ, आशा है कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। पहली बार मैं भी सुन रहा था, मैंने बोला अच्छा चलो नवरात्रि की जो पर्व आने वाली है तो इसके लिए हम ये गीत आप तक सुनाते हैं। एक गीत और हमारे पास है जो हम आपके लिए पेश करना चाहेंगे, शायद हमारे पास ये आखिरी जो गीत रहेगा, तो हम अलविदा चाहेंगे।

सैटरडे को फिर हम जुड़ जाते हैं 5 PM, तो ज़रूर हमें फ्रीक्वेंसी 96.9 पे आप सुनते रहिए, और जो सिस्टर रेडियो स्टेशन से जो हमारे जो शेयर करते हैं हमारा जो ये ब्रॉडकास्ट, तो उसको भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। तो चलो हम ये लास्ट गीत जो आपके लिए छोड़ते हैं, उसके बाद में हम फिर मिलेंगे जब जैसे हमें नेक्स्ट समय मिलता है।